0: सकाळचे 8 वाजलेत आणि तुम्ही ऐकताय रेडिओ विश्वास, तुमचं जगणं तुमचा आवाज.
1: This hour is brought to you by विश्वास कोऑपरेटिव्ह बँक,
2: संचयात समृद्धी.
3: आता विश्वास बँकेच्या मोबाईल ऍप मार्फत इंटर ब्रांच ट्रान्झॅक्शन आणि नेट सुविधा अर्थातच NEFT उपलब्ध. ग्राहकांनी ऍप रजिस्ट्रेशनचा फॉर्म नजीकच्या शाखेत भरून सदर सुविधेचा जरूर लाभ घ्यावा.
4: नमस्कार नाशिककर, मी विश्वास ठाकूर बोलतोय आणि आपण ऐकत आहात रेडिओ विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडिओ, तुमचं जगणं तुमचा आवाज.
5: नामको बँक शैक्षणिक कर्ज, नामको विद्या साधना
6: आणि हे शैक्षणिक कर्ज मिळते आहे फक्त 9% 5 लाखांपर्यंत तारणाची आवश्यकता नाही.
5: कर्ज मर्यादा 50 लाखांपर्यंत,
6: परतफेड कालावधी 5 ते 10 वर्ष.
5: आजच जवळच्या नामको बँक शाखेला भेट द्या, अटी व शर्ती लागू.
7: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार. श्रोताओं, हमारा सवाल था कि DK पट्टम्माल का जन्म कब हुआ था. इसका सही जवाब है 19 मार्च. और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के 2 भाग्यशाली श्रोता हैं, दिल्ली से अमित कुमार और मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हरस्वरूप. आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई. हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र.
8: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल.
9: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन.
8: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
9: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ.
8: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक. आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं. ध्यान रहे, बुधवार

राष्ट्र ध्वज तिरंगा हमारी पहचान है। ये केवल तीन रंगों का संगम नहीं, ये भारत की आत्मा का उजास है। ये केवल ध्वज नहीं, हम भारतीयों की भावनाओं का स्पंदन है। इसके हर रंग में युग बोलता है, इसकी हर लहर में इतिहास डोलता है। हमारा तिरंगा हमारी आन बान और शान है, जिसकी छाया में विभिन्न जाति धर्म और भाषा के बावजूद हम सब भारतीय हो जाते हैं। हमारे इसी राष्ट्रध्वज की कल्पना करने वाले, उसे आकार देने वाले महान देशभक्त थे पिंगली वेंकैया। वो एक स्वाधीनता संग्राम सेनानी, कृषि विज्ञानी, भूविज्ञानी और अनेक भाषाओं के जानकार भी थे। पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त सन 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के पास स्थित भटला पेनुमारू नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम हनुमंत रायुडू और माताजी का नाम वेंकट रत्नम्मा था। पिंगली वेंकैया की बुद्धि की प्रखरता बचपन से ही अद्वितीय थी। उनकी आरंभिक शिक्षा हिंदू हाई स्कूल मछलीपट्टनम में हुई। इसके बाद शिक्षा के लिए वो कोलंबो चले गए, जहां उन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज की पढ़ाई की तथा परीक्षा उत्तीर्ण की। कोलंबो के सिटी कॉलेज में उन्होंने राजनीति शास्त्र का गहन अध्ययन किया। शिक्षा में उनकी गहरी रुचि थी, यही कारण है कि आगे चलकर उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज से भूविज्ञान में भी डिप्लोमा प्राप्त किया तथा एक भूवैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसके साथ ही उन्होंने कृषि विज्ञान का भी गहन अध्ययन किया था। प्रकृति, मिट्टी, चट्टानों और फसलों में उनकी गहरी रुचि थी और यही रुचि उनके जीवन के विभिन्न वैज्ञानिक पड़ावों का आधार बनी। उनके भीतर जितनी ज्ञान की प्यास थी, उससे कहीं अधिक देश प्रेम की गहरी भावना थी। यही कारण है कि मात्र 19 वर्ष की आयु में वो भारतीय सेना में शामिल हो गए।

ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल होने के बाद पिंगली वेंकैया के जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव आया। उन्हें दक्षिण अफ्रीका में चल रहे द्वितीय बोअर युद्ध के मोर्चे पर सेवा के लिए भेजा गया। दक्षिण अफ्रीका की उस तपती रणभूमि में इतिहास ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण संगम रचा। यहीं उनकी भेंट युवा बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी से हुई, जो वहां रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। गांधी जी के विचारों ने पिंगली वेंकैया के मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। बोअर युद्ध के मैदान में एक टीस थी जो उनके स्वाभिमानी हृदय को बेचैन कर देती थी। जब भी भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश ध्वज यूनियन जैक को सलामी देने के लिए विवश किया जाता, उनका मन विद्रोह कर उठता। वो स्वयं से प्रश्न करते कि इतने विशाल और गौरवशाली भारत देश का अपना कोई ध्वज क्यों नहीं है, जिसके नीचे पूरा राष्ट्र एकजुट होकर खड़ा हो सके। और उनका यही विचार आगे चलकर राष्ट्र ध्वज के निर्माण की अमर गाथा बन गया। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उन्होंने रेलवे में गार्ड के रूप में नौकरी की, लेकिन राष्ट्र जागृति उनके जीवन का लक्ष्य बन चुका था। उन्होंने सरकारी सेवा छोड़कर लाहौर के प्रसिद्ध एंग्लो वैदिक कॉलेज में प्रवेश लिया तथा उर्दू, संस्कृत और जापानी भाषा का गहन अध्ययन किया। जापानी भाषा पर उनकी अद्भुत पकड़ देखने को मिली जब उन्होंने धारा प्रवाह जापानी भाषा में ऐतिहासिक भाषण दिया। सुनने वाले हैरान थे। लोग उनसे इतना अधिक प्रभावित हुए कि आदरपूर्वक उन्हें जापान वेंकैया का नाम दे दिया। आगे चलकर उन्होंने मद्रास में प्लेग इंस्पेक्टर का प्रशिक्षण लिया और वेल्लारी में प्लेग इंस्पेक्टर के रूप में भी काम किया। उन्होंने आंध्र नेशनल कॉलेज मछलीपट्टनम में लंबे समय तक अध्यापन का कार्य भी किया तथा कृषि एवं भू विज्ञान के क्षेत्र में शोध किए। इस तरह कई भूमिकाओं में उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन उनके लिए देश सर्वोपरि था। स्वदेशी आंदोलन हो, वंदे मातरम हो या होम रूल आंदोलन, वो पूरी निष्ठा से इसमें सक्रिय रहे। वो लगातार अधिवेशनों में शामिल होते रहते तथा अपने महत्वपूर्ण विचार रखा करते। वो देखते थे कि अधिवेशनों में भारत का कोई ध्वज नहीं फहराया जाता था। उन्हें लगता कि राष्ट्र ध्वज किसी भी देश की साझी राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक होता है। उनके मन में भारत के राष्ट्र ध्वज के निर्माण की कल्पना जागने लगी और समय के साथ ये कल्पना एक संकल्प में बदल गई।

पिंगली वेंकैया भारत के राष्ट्र ध्वज को मुक्त गगन में लहराता हुआ देखना चाहते थे। उन्होंने 5 साल तक 30 से भी अधिक स्वतंत्र देशों के राष्ट्र ध्वजों, उनके इतिहास, रंगों और संरचना का अध्ययन किया और एक पुस्तक भी प्रकाशित की, अ नेशनल फ्लैग फॉर इंडिया, जिसमें भारत के लिए संभावित 30 से भी अधिक ध्वज रूप प्रस्तुत किए गए थे। और तभी आया सन 1921 का साल। विजयवाड़ा में आयोजित अधिवेशन में वो गांधी जी से मिले और उनके समक्ष ध्वज प्रस्तुत किया। पिंगली वेंकैया का मूल ध्वज 2 रंगों का था। इसमें एक रंग लाल था, जो हिंदू समाज का प्रतीक था, और दूसरा रंग था हरा, जो मुस्लिम समाज का प्रतीक था। गांधी जी ने सुझाव दिया कि अन्य सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बीच में सफेद रंग भी जोड़ा जाए।

इस सफेद रंग पर चरखा अंकित किया जाए, जो स्वावलंबन, श्रम और स्वदेशी का प्रतीक बने। और फिर सन 1931 में हुए कराची सम्मेलन में लाल की जगह केसरिया, सफेद और हरे रंग के तिरंगे को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इस तरह पिंगली वेंकैया की कल्पना और संकल्प ने तिरंगे को आकार दिया और 22 जुलाई सन 1947 को स्वतंत्रता से ठीक पहले हमारा वर्तमान राष्ट्रध्वज अंगीकार किया गया, जिसमें ध्वज के तीनों रंग केसरिया, सफेद और हरा यथावत रहे। चरखे के स्थान पर अशोक चक्र रखा गया, जो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इस तरह करोड़ों भारतीयों की आत्मा, संप्रभुता और गौरव की भावना को पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्र ध्वज में पिरो दिया। पिंगली वेंकैया एक समर्पित वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने कंबोडियाई कपास पर गहन शोध किया तथा उसकी एक उत्कृष्ट संकर नस्ल भारत में विकसित की थी। इस वैज्ञानिक अवदान के लिए उन्हें संपूर्ण भारत में पट्टी वेंकैया यानी कपास वेंकैया के नाम से पुकारा गया। जन सेवा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने महामारी प्रबंधक के रूप में भी कार्य किया था तथा प्लेग के प्रकोप से लोगों को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पिंगली वेंकैया एक भूविज्ञानी भी थे। अपने भूविज्ञान अध्ययन का उपयोग करते हुए उन्होंने हीरे के खनन पर भी शोध किया। वो हीरा खनन और रत्नों के मूल्यांकन के अद्वितीय विशेषज्ञ थे, इसीलिए उन्हें डायमंड वेंकैया भी कहा जाने लगा। भारत की आजादी के बाद उन्होंने भारत सरकार के खनिज अनुसंधान विभाग में सलाहकार के रूप में कार्य किया और सन 1955 में हीरों पर लिखी उनकी पुस्तक द मदर ऑफ डायमंड्स प्रकाशित हुई। आजीवन राष्ट्र सेवा करते हुए 4 जुलाई सन 1963 को उन्होंने अंतिम सांस ली। पिंगली वेंकैया द्वारा परिकल्पित राष्ट्र ध्वज में लाल की जगह केसरिया रंग स्वीकारा गया, सफेद रंग और अशोक चक्र जोड़ा गया और ये रंग समुदाय नहीं गुणों के प्रतीक बने। लेकिन आज भी हमारे तिरंगे में समाहित साहस, बलिदान, सत्य, शांति, समृद्धि, शक्ति और विश्वास के प्रतीकों में पिंगली वेंकैया की भावनाएं, उनका राष्ट्र प्रेम मुस्कुराता है। राष्ट्र अस्मिता के इस महाशिल्पी को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि पिंगली वेंकैया का जन्म कब हुआ था? सवाल एक बार फिर सुन ले, पिंगली वेंकैया का जन्म कब हुआ था? आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: क्या बेटी,
1: खुशी
0: बहुत रात हो गई
1: मिली कैसी।
0: हाँ हाँ ठीक है, कल खेलेंगे।
1: बिना रुके से ना
0: कमली।

0: खुल गई चोर बाजारी, अरे लुट गई दौलत सारी, सेठ भी अंदर माल भी अंदर दोनों ना बच पाएंगे, जैसे सेठ मरा है वैसे सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे।

0: मीसा जारी, अकड़ वो टूटी सारी, तो जालिम अंदर जोश भी अंदर होश ठिकाने आएंगे, जैसे मारा गया वो जालिम सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून पर

है लानत चोर बाजारी, ये दौलत है बीमारी, है लानत चोर बाजारी। अरे छोड़ दो मारा मारी और फेंक दो छुरी कर।

मोटे लाला शौकीन गोलमोल झोल मोटे लाला शौकीन गोंद में छुपाए हैं चिरागे अलादीन तीन को हमेशा करते आए साढ़े तीन तीन को हमेशा करते आए साढ़े तीन जरा नाप जरा कोल इसे लो।

कहे कोई कोतवाल, किस पे यकीन करूं मुश्किल सवाल। दुनिया में यारों है बड़ा ही गोलमाल, दुनिया में यारों है बड़ा ही गोलमाल। कहीं ढोल कहीं पोल, सीधी बात टेढ़ी चाल।

के चक्कर में पड़ गया हाय हाय हाय, कहाँ जान फंसाई मैं तो सूली पे चढ़ गया हाय हाय, कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला, अरे कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखे।

हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी, अच्छा ख्याल है आपका दीदी, ये मुझको पता अपने बाप का, आपके बाप को चिट्ठी के जरिए बता दूंगा, अच्छा ख्याल है आपका।

0: अरे बाप रे, इतने में आ गया उसका भाई, कहने लगा
1: ये मुंह और मसूर की दाल पे, निकल जा निकल जा निकल जा यहाँ से चंडाल के बच्चे।
0: उसका भाई था बक्सर भारी, उसका भाई था बक्सर भारी, उसने की हमले की तैयारी, मैं तो तुमको दबा कर भागा, मैं तो तुमको दबा कर भागा, रास्ते में बोला मन का कागा,
2: क्या क्या कुएं में

अब तो तुमको झुकना होगा, मेरा जमाना आया। छुट्टी करके छोड़ूंगा क्योंकि मेरी लॉटरी लग जा रही।

दुनिया के बोझ को सर से उतार दे, चिंता के भूत को बंदूक मार दे। क्यों भाई मैंने ठीक कहा, हाँ हाँ तुमने ठीक कहा, अरे तब फिर मैंने ठीक कहा। ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए

0: पर दुनिया को मार दे, बाटे के बूट पर है। दुनिया की गाड़ियां चलती है झूठ पर, दुनिया को मार दे बाटे के बूट पर। क्यों भाई मैंने ठीक कहा?
1: हाँ हाँ तुमने ठीक कहा।
0: अरे तब फिर मैंने ठीक कहा, ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया के बाजार में।

0: जैसे मुझसे माधो छीन लिया गया छोटे सरकार, वैसे एक दिन आपकी सबसे प्यारी चीज आपसे कुदरत छीन लेगी।
1: खुद को छुपाने

0: मेरी सूरत के तलबगार मगर क्या जाने कि मेरा मारा हुआ दुनिया में ना पानी मांगे।
1: वाह

0: अरे मामा, तू यहाँ अय्याशी कर रहा है और ऊपर से तेरा भांजा आ रहा है।
1: हैं? भांजा आ रहा है? अब क्या होगा? देवियों, भागो यहाँ से।
2: मगर मामा, भागने के लिए कोई रास्ता भी तो नहीं।

0: फक्त रेडिओ विश्वासवर।
1: पंथी हूं मैं उस पद का, अंत नहीं जिसका, आस मेरी है जिसकी दिशा, आधार मेरे मन का।

नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे, कोई शराबी मद का प्याला जैसे पी के आए, हिट हिट हिट की आए तबीयत दिखी दिखी जाए। दिला का जोयो सुनो, दिला का जोयो सुनो, दिला का दिल आज दिल आज दिल आज दिल आज दिल आज दिल आज दिल अरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हिट हिट हिट की आए तबीयत बिटकी बिटकी जाए। डीला का जोड़ो डीला का डीला का जोड़ो डीला का डीला।

0: हमारे पंछी बन के हो गए 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 किस मुश्किल में जान फंसी है अपने बच गए 12। हमारे पंछी बन के हो गए 9, 10, 11 किस मुश्किल में जान फंसी है अपने बच गए 12। रूप की गर्मी 16 बनकर दिल में आग लगाए, हित हित हित की आए तबीयत टिक्की टिक्की खाए। अरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए तबीयत टिक्की टिक्की खाए।
1: सोनं आहे मग पैशाची चिंता कशाला। विश्वास बँकेचे गोल्ड लोन फक्त 9% व्याजदर, रुपये 50 लाखांपर्यंत कर्ज आणि ओडी अर्थात ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटीची विशेष सुविधा। अधिक माहितीसाठी जवळच्या शाखेला अवश्य भेट द्या किंवा कॉल करा 9130002088। गोल्ड लोन म्हणजे विश्वास बँक।